0: ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM ਮੇਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
1: छात्र जो है गुस्से में थे पिछली रात, जो है इन्होंने प्रदर्शन किया है और यहाँ पे हालांकि अभी बड़ी संख्या में छात्र जो है यहाँ पे खड़े हैं। नेशनल हाईवे जो है चंडीगढ़ अमृतसर जो है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है छात्रों के द्वारा। सुबह कुछ समय के लिए पुलिस ने जो है नेशनल हाईवे खुलवाया था, मगर उसके बाद छात्र जो है दोबारा इस राष्ट्रीय राजमार्ग पे आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक इसमें कोई कार्रवाई जो है सही तरीके से नहीं होती। हालांकि पुलिस ने एक FIR इसमें दर्ज की है, पर छात्र ये भी मांग कर रहे हैं कि जिन
2: इस बात का दबाव था, जब बच्चे ये कह रहे हैं कि एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहे थे, 5 या 6 जैसा उन्होंने बताया स्टूडेंट जो आपके साथ थे, सुइसाइड के केसेस, अब इस बच्ची का मामला, लड़की को लेकर के मामला, यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है कि भाई ये बदनाम करने की साजिश। हम सब जानते हैं अशोक मित्तल अभी हाल में बीजेपी में शामिल हुए, क्या कोई दबाव के तहत ऐसा किया जा रहा था पर्दा डालने की कोशिश?
1: बिल्कुल बात वही जी। देखिए जो छात्र बोल रहे हैं उसके मुताबिक तो यही है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है, जो यहाँ घटनाएं हो रही थी उनको दबाने की कोशिश कर रहा था, पर अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से जो है, जो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें जो है वो पॉलिटिकल जो स्मेल जो आ रही है उसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें ये लगता है कि ये सारा मामला जो है राजनीति के तहत इसको उठाया जा रहा है। पर छात्र जो है, छात्रों की ये बात जो है वो ज्यादा अहमियत इसमें रखती है बजाय राजनीति के। छात्र जब कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जितने सुसाइड हुए हैं यहाँ पे, वो जो है रिपोर्ट नहीं किए गए, वो बाहर नहीं आए, छात्रों की बात सुनी नहीं जाती है, और ये रेप केस जो है जो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है,
2: मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन से आपकी कोई बात हो पाई, किस आधार पर बिना पड़ताल किए? चलिए अब FIR दर्ज हो गई है, पुलिस कदम उठा रही है, लेकिन छात्रों की मांग पर बिना पड़ताल के ये कह देना बदनाम करने की कोशिश, जबकि मामला अनफॉर्चुनेटली एक लड़की के साथ रेप के आरोपों का है।
1: जी बिल्कुल बात वही है कि मामला बड़ा गंभीर है, अगर रेप के एलिगेशन लग रहे हैं तो रेप के एलिगेशन को आप जो है दबा नहीं सकते हैं, आपको उनकी जांच करनी चाहिए, स्टूडेंट से बात करनी चाहिए। छात्र बोल रहे हैं कि उस गर्ल्स हॉस्टल में छात्राएं जो है वो बात कर रही है कि इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है, तो अगर इंसिडेंट हुआ है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से क्या पुलिस को कोई इतला दी गई, क्या पुलिस को बताया गया कि छात्राएं जो है इस तरीके से शिकायत कर रही है और इसकी जांच जो है की जानी चाहिए? तो छात्र तो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई कार्रवाई जो है इसमें नहीं की और अल्टीमेटली उन लोगों को प्रदर्शन जो है करना।
2: सचिन मामला
3: जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया है। एक छात्रा से कथित तौर पर रेप की खबर सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल होने के बाद रात करीब 2 बजे छात्र सड़कों पर उतर आए। गर्ल्स हॉस्टल के पास से शुरू हुआ ये प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र हो गया और छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में 2 आगजनी के साथ गेट पर भारी तोड़फोड़ की। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने चंडीगढ़ अमृतसर नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कपूरथला पुलिस मौके पर पहुंची। SP गौरव तूरा के मुताबिक यूनिवर्सिटी में छात्रा से रेप की फेक न्यूज फैलाई गई है। रेप का आरोप वाला मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिससे छात्र उग्र हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि मैसेज कहां से वायरल हुआ है। हालांकि दिन में अभी भी कल बवाल देखने को मिला।
0: LPU जिन्हों कहते हैं जी, LPU ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਬਟ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਰਗੇਟ ਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸੰਜਰਸ ਨੂੰ ਕੈਲਗੀ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੱਕ 1 ਘੰਟਾ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਗੀ। ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਪ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਟਵਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਓਟਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया
2: की होया
1: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नू फेर नहीं मिल होना दो दिन
2: ओहो रह गए ना फेर पिछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस
3: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ
4: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕੈਲਗਰੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿੱਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ

0: खांसी हो की तुसी लंबी लाइन डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार ओइसे स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी इत्थे सारियां लई सुविधावां मौजूद हन अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं सीधे चले आओ इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक ता देर किस गल दी आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4496 ओइसे स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 5876174696
1: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने ता फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार
2: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है
1: सुनो सुनो सुनो ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो तजुर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उनां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208
2: बड़े सोचां च पए हो वीर जी की गल होगी
1: थक गए हां घर लब लब के कैलगरी च घर खरीदना ता हुण बड़ा ही औखा
2: तुसी घर चंद्रमा ते लबदे होणे कैलगरी च नहीं आ नोट करो नंबर अरुण कौशल दा
1: कर लिया जी नोट फोन नंबर 403-618-2112
2: रियल एस्टेट दे सब मसलियां दा हल करनगे प्रेप रियलिटी दे मशहूर रियलटर अरुण कौशल
1: अच्छा जी अरुण कौशल लब के देणगे सानू घर
2: जी हां कल्ले घर नहीं प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होवे जां कमर्शियल घर खरीदना होवे जां बेचना प्रेप रियलिटी दी वड्डी टीम तो ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403-618-2

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फेर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनिया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
4: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू या फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो या फिर फोन कर लो 4039036757।
3: मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स।
5: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ।
6: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ, ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਐਟ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।